0: नित त्यागो तरंग आप छोड़ बेनती करो
1: गगन सागर तरो
0: हर तन के पर लिहो पंडार
1: गुरु पूरे नमस्कार
0: हेम कुशल सहज आनंद
1: परमानंद
0: नरक निवार उदारो जियो
1: गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चितवो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ये आधार
0: उत्तम श्लोक साध के बचन सुनत कमावत होते उदार सफल जीवन सफलता का संग
1: जाके मन लागार रंग
0: जय जय शब्द अनाहद वाजे
1: सुन सुन अनद करे प्रभु गाजे
0: सबते गोपाल महांत के माथे
1: नानक

वैरण को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप फाद मुझे अबरिया मरण काल का त्रासन वरिया ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾਓ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਤੁਜ ਜੋ ਕਰੇ ਹੋ ਰੱਛਾ।

ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माताओ, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राताओ, किलबिक सकल देह को हरताओ, दोष दोखियन को छय करता। श्री अस्तुज जपहि दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांछत फल पावै सोई, दुख नत सबे आपत कोई अड़िल।

रग बरकरा सगरी पुरे समेत चौपाई। जो एह कथा सुने अर गावै दुख पाप ते निकट न्यावै बिसन भगत की ए फड़ होई आदि अछब सकै न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बजी प्रथम सुख दावन तै प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लाहो लेहो सुधारा दोहरा। नेत्र तुम के चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो राघवर कथा प्रसंग।

जितनी सेवा प्रवान करनी जी हो आओ साहिबां दे अनंत साहिब जी का जाप सरवण करिए उपरंत अरदास शामिल है जी हो दर ते आईयां संतां दीआं हाजरियां सतगुरु अपने दर ते प्रवान करन सभना नूं दरों करों सिखी सिदक भरोसा बख्शिश करन कदम कदम लेखे लावन आओ प्यार नाल सुन करो जी अनंत साहिब जी की बाणी।

न पाया जाए किसै बिटो रोहे लोक विल लाए। ऐसा सतगुरु जी मिलाए तिसनू सिर सौंपिए बिच हुआ बुझाई। जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आई। हर आप मुलक है भगत न के नानका जिन हर पल्लै पाए। हर रास मेरी मन मन जारा हर रास मेरी मन मन जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपे हो जी हो लाह खट्यो दिहाड़ी। इहो धन तिना मिलिया जिन हरिया।

जुग जुग फिर बटाइए ज्ञानी बुझेताही। साजगुर संतोख का धर्म ग्रथ वाओ, त्रेतर जतै का जोर ग्रथ वाओ।

कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सबको सच समावे रख रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर।

गौ ब्राह्मण कौ कर लाभ गोबरतर न जाई। धोती टिका तेज हमाली तहन मिले शाखाई। अंतर पूजा पढ़ते बासन।

जे हजारते हो वर्त देखो को निर्दास वस्तु अंदर बस मावे दूजी होवे पास साहब सेती हुकुम न

मत सुमत तेरा वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी।

हो सुनया हाथ होवै सगा हो। नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास। मने की गत कही न जाए जे को कह पिछा पछताए। कागद कलम न लिखन हार मने का बह करन विचार। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए। मन सुरत होवे मन बुद्ध मन सगल पवन की सुध।

एको मन जाने मन कोय, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पाव है दरगह मान, पंचे सोह है दर राजान, पंचा का गुरेक त्यान। जे को कह कर विचार, करते का करना नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। जे को बुझा होवे सत्यार, तबले उपर केता पार, धरती होर परा होर होर, तिस्ते पार तले कमन जोर। जी जात रंगा कि नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाना कोए, लेखा लिखिया केता होए। केता तान स्वाले हो रूपा, केती दात जाने कौन कूता, कीता पसावे को कवाओ, तिस्ते होए लख दरियाओ, कुदरत कमन कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पहावा साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रह है उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरमोह पख सार, असंख मोन लिवलाए तार, कुदरत कमन कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पहावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर करह पार, नानक नीच कह विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पहावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख ताव, गम गम असंख लो, असंख कह है सिर पहर होए, अखरी नाम अखरी सालाह, अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग वखाण, जिन एहे लिखे तिस सिर नाहि, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कमन कहा विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद पहावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। भरी है हथ पैर तन देह, पानी धोता उत्तर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लईए ओहो तोए, भरी है मत पापा।

गाव है खंड मंडल पर पंडा कर कर रखे तहरे से तुद नौ गाव है जो तुद पहमन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेख्या कीता अपना जिब तिस दी वड्याई जो तिस पहावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साह पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरमपत झोली ध्यान की करह बेभूता खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी।

सभुत ज्ञान दया भंडारण कट कट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अबरासाद संजोग विजोग द्वे कार चलाव है लिख

केते ब्रह्मे कार्त कड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते अंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंदर।

ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथैनाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तिथै काढ़त कड़ी है।

सुनियार आहरण मत वेद हथियार औख लागन तपताओ पांडा पाओ अमृत तित टहाल कड़ी है शब्द सती टकसाल जिन कौ नदर कर्म तिन कार नानक नदरी नदर ने

ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरताखी है करते का होए बीचारो, तित कर गाव हो सो हेला सिवरे हो सिर जनहारो, तुम गाव हो मेरे निरभौ का सो हेला, हौ वारी जित सो हेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जी अड़े समाली अन देखेगा देवनहार, तेरे दान कीमत ना पवै तिसदा ते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल, देहो सज्जन सीसड़िया जो होवै साहिब स्यो मेल, कर करे हो पहुचा सदड़े नित पवाना, सदन हारा सिमरिया नानक से देह आवाना। राग आसा महला पहला, छे कर छे गुरा।

नगर बहो परेया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मनहर लिव मंडल मंडा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे राव साकत हर

ओहकार सतगुर प्रसाद राग श्री राग महला पहला पहला घर पहला मोती ता मंदर ऊसरा है रतनी ता हो हे जड़ाओ कस्तूर कुंगू अगर चंदन ली पिया बचाओ मत देख फूला विसरा तेरा चितना वै नाओ हर बिन जियो जल बल जाओ मैं अपना गुरपूछ देखिया वरना ही थाओ रहाओ धरती ता हीरे लाल जड़ती पलग लाल जड़ाओ मोहनी मुखमणि सो है करे रंग पसाओ मत देख भूला विसरा तेरा चितना वै नाओ सिद्ध होवा सिद्ध

रास सोयना रास रूपा कामण रास परमल की वास रास घोड़े रास सेजा मंदर रास मीठा रास मास एते रास शरीर के कै घट नाम निवास जित बोलिया पत पाई है सो बोलिया प्रवान फिका बोल विगुचना सुन मूर्ख मन अजान जो तिस भाव है से भले होर के कहन बखान तिन मत तिन पत तिन धन पलै जिन हिरदै रहया समाए तिनका क्या साला हणावर सवाल्यो काए नानक नदरी बाहरे राचा है दान नानाए श्री राग महला पहला अमर करोला कूड़का दिता देवनहार अमल गलोला कूड़का दिता देवनहार मती मरन विसारिया खुशी कीती दिन चार सच मिलिया तिन सोफिया राखण कौ दरबार नानक साचे को सच जान जित सेव्या सुख पाईऐ तेरी दरगह चलै मान रहाओ सच सरा गुड़ बाहरा जिस विच सच्चा नाओ सुनै वखाणा है जे तुड़े हो तिन बलिहारा जाओ ता मन खीवा जानिया जा महली पाए थाओ नाओ नीर चंगियाईया सत परमल तनवास ता मुख होवै उजला लख दाती एक दात दुख तिसै पह आखी है सूख जिसै ही पास सो क्यो मन हो विसारी है जाके जी प्राण तिस विण सब पवित्र है जेता पहनण खाण होर गल्लां सब कूड़िया तुद पहवै परवान श्री राग महल पहला जाल मोह कस मस कर मत कागद कर जिसार भाव कलम कर चित लेखारी गुरपुछ लिख बीचार लेख नाम सालाह लेख लेख अंत नाम पारावार बाबा एहो लेखा लिख जान जिथै लेखा मंगी है तिथै होए सच्चा निशान रहाओ जिथै मिल है वड्याईया साध खुशिया साध चाओ तिन मुख टिके निकलै जिन मन सच्चा नाओ कर्म मिलै ता पाई है नाही गली वाओ दुआओ एक आव है एक जाहे उठ।

जिन्ना पोते पुन से ज्ञान विचारी जिन्ना पोने पौते नो मैं मारी नानक जो नाम रते तिनको बलहारी गौड़ी गुआरे री महला तीजा तू अकथ क्यों कथया जाए गुर शब्द मारण मन माहे समाए तेरे गुण अनेक कीमत न पाए जिसकी बाणी तिसमाए समाणी तेरी अकथ कथा गुर शब्द वखाणी राव जै सतगुर तै सतसंगत बनाई जै सतगुर सहजे हर गुण गाई जै सतगुर ताह मैं शब्द जलाई गुरमुख सेवा महली थाओ पाए गुरमुख अंतर हर नाम वसाए गुरमुख भगत हर नाम समाए आप दत्त करे दातार पूरे सतगुर स्यों लगे प्यार नानक नाम रते तिनको जयकार गौड़ी गौरे री महला तीजा एक स्ते सब रूप है रंगा पौन पानी बैसंतर सब सहलंगा भिन भिन वेखे हर प्रभ रंगा एक अजरज एको है सोई गुरमुख विचारे बिरला कोई रहाओ सहज पवे प्रभ सबनी थाई कहां गुत प्रगट सब बणत बनाई आपे सुधरग सत्या दे जगाई तिसकी कीमत किने न होई कह कह कथन कह सब कोई गुर शब्द समावे बूझे हर सोई सुन सुन वेखे शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते तिन हर नाम सुआए गौड़ी गुआरे री महला तीजा मनमुख सोता माया मोह प्यार गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार से जन जागे जन नाम प्यार सहजे जागे सवे न कोए पूरे गुरते बूझे जन कोए रहाओ असंत अनाड़ी कदे न बूझे कथनी करे ता माया नाल लुझे अंध अज्ञानी कदे न सीजा इस जग में राम नाम निस्तारा विरला को पाए गुर शब्द विचारा आप तरह सगले कुल उधारा इस कल युग में कर्म धर्म न कोई कली का जन्म चंडाल कह कर होई नानक नाम बिना को मुक्त न होई गौड़ी महला तीजा गुआरे री सच्चा अमर सच्चा पातशाह मन साचे राते हर वे प्रवाह सच्चे मैल सच नाम समा सुन मन मेरे शब्द विचार नाम जपो भवजल उतरे पार हाओ परमै आवे परमै जाए जग जन में दूजे पाए मन मुख न चेते आवे जाए आ पुला के प्रभ आ पुलाया ए जीव विडाणी चाकरी लाया महा दुख हटे दिर बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मिलाए एको नाम चेते विचों भरम चुकाए नानक नाम जपे नौ नौ निध पाए गौड़ी गुआरे री महला तीजा जिन्ना गुरमुख तिहाया तिन पूछो जाए गुर सेवा ते मन पति आए से तनवंत हर नाम कमाए पूरे गुर ते सोजी पाए हर हर नाम जपो मेरे पाए गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप पुछाणे मंदिर मल होवे जीवन मुक्त हर पावे सोए हर गुण गावे मत उत्तम होए सहजे सह समावे सोए दूजे पाए न सेवया जाए हो मैं माया महाबिखाए पुत कटंब ग्रह मोहे अमाए मनुख अंधा आवे जाए हर हर नाम दिवे जन सोए अंधन भगत गुर शब्दी हो।

ਅਖੁੱਟ ਨਾਮ ਤਨ ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਈ, ਐਥੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਰ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭਰਮ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਜੈ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵੈ ਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਸਾਰੇ, ਆਪ ਉਦਰੇ ਕੁਲ ਸਗਲ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਹਰੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਸਦਾ ਮਨ ਦਾਸਾ, ਹੋਮੇ ਮਾਰ ਕਮਲ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਆਨੰਦ ਵਾਜੇ ਨਿਜ ਕਰਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰਮਾ ਹੀ ਉਦਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਿਨਕੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਅਨਦਿਨ ਜਪੈ ਹਰ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਨਿਹ ਕੇਵਲ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇ ਨੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਵਡਭਾਗ ਸੰਜੋਗ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਨਿਤ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਮ ਹਰ ਤਿਹਾਏ, ਜਨਮ ਜੀਤ ਜਗ ਲਾਹਾ ਨਾਮ ਪਾਏ ਰਹਾਉ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੀਠਾ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਨੇ ਵਿਰਲੇ ਚਖ ਡੀਠਾ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਹੁ ਕਰਮ ਆਚਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਅਹੰਕਾਰ। ਬੰਧਨ ਬਾਂਧਿਆ ਮਾਇਆ ਫਾਸ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਛੂਟੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ, ਜੈਸੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਮੇਘਲਾ ਬਰਸਤ ਹੈ, ਕਹਿ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਨਾਹੀ। ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਮੱਧੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ, ਬਿਨ ਪਗਾ ਵਰਸਤ ਫਿਰਾਹੀ। ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਭਰਮ ਚੁਕਾਹੀ, ਜੋਕਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ ਸੋਈ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ, ਤੈਸੇ ਜਾਏ ਸਮਾਈ ਰਹਾਓ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਉਹ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਸਦਾ ਹਰ ਤੇਰੇ, ਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੁਝ ਹੀ ਮਾਏ ਸਮਾਈ। ਇਤਨੇ ਜਨਮ ਭੂਲ ਪਰੇ, ਸੇ ਜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਭੂਲੇ ਨਾਹੀ। ਜਾ ਕਾ ਕਾਰ ਸੋਈ ਪ੍ਰਜਾਣੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਹੀ। ਤੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੂੰ ਹੈ ਆਪੇ ਪਰਮ ਕਹਾਹੀ, ਨਾਨਕ ਤਤ ਤਤ ਸੋ ਮਿਲਿਆ ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨ ਆਹੀ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਭ ਜੁਗ ਚਕਾਲੇ ਵਸ ਹੈ ਬਾਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਏ। ਹੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮਨ ਮੁਖ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰਚਰਣੀ ਚ ਤਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਦਾਨ ਲੈ ਦਰਗਹਿ ਲੈ ਛਿਡਾਏ ਰਹਾਉ। ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਭਰਮ ਦੇ ਮਨ ਅਠ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਚੀਨਿਓ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਪਛਾਣਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਅਨੰਦਨ ਭਗਤੀ ਰਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮੇ ਸੁਖ ਸਮਾਏ। ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਪ੍ਰਤੀ ਤੋ ਮੈਂ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਮੀ ਪਾਈਐਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਪੇਰੀ ਅੜੈ ਦਿਨ ਚਾਰ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਲਿਖ ਪਾਇਆ, ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਨਾਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਪੇਵਕੜੈ ਗੁਰਸਮੁਲੈ ਸੋਹਰੈ ਵਸ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸਸਰੈ ਪਈਐ ਫਿਰ ਸਹਿ ਕੋ ਖਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ, ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਅਰਖ ਹੈ ਆਪੇ ਮੇਲਾਈਐ ਰਹਾਉ। ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਮਤ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਵਡਭਾਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੈ ਮੁਖੇ ਮਦਦ ਪਾਈਐ। ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖ ਸਮਾਈਐ, ਸਭ ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਨਾਏ ਲਾਈਐ। ਮਨ ਮੁ ਗਰਬ ਨ ਪਾਇਓ ਅਗਿਆਨੇ ਆਣੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੇ। ਗਰਬ ਜੋ ਨੀ ਵਾਸ ਪਾਏ ਗਰਬੇ ਗਲ ਜਾਣੇ, ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਏ ਵੈ ਭਾਵਦਾ ਮਨਮੁਖ ਪਰਮਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਲੇਖ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਰਮਸਤਕ ਪੂਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਭੇਟਿਆ ਗੁਰਸੂਰਾ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦ ਪਬੀਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਰਾ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਤਤ ਵਿਚਾਰਾ, ਮਤ ਮਲੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹੀ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰਾ। ਸਿਵ ਸਖਤ ਮਿਟਾਇਆ ਚੂਕਾ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਤੁਰਮਸਤਕ ਜਿਨ ਕੋ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਹਰ ਕਿਤ ਬਿਦ ਪਾਈਐ ਸੰਤ ਜਨੋ ਜਿਸ ਦੇਖ ਹੋ ਜੀਵਾਂ, ਹਰ ਬਿਨ ਚਸਨ ਜੀਵਤੀ ਗੁਰਮੇਲੇ ਹਰ ਰਸ ਪੀਵਾਂ ਰਹਾਉ। ਹੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਨਿਤ ਹਰ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਗਤ ਕੀਨੀ ਹਰ ਰਸ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਲੀਨੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਭਗਤ ਹਰ ਦੀਨੀ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਸੋ ਗੁਰ ਹਮ ਕੀਨੀ। ਗੁਣਦਾਤਾ ਹਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਹੈ ਹਮ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ, ਪਾਪੀ ਪਾਤਰ ਡੂਬਦੇ ਗੁਰਮਤ ਹਰ ਤਾਰੇ। ਤੂੰ ਗੁਣਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲਾ ਹਵ ਗੁਣ ਹਵ ਅਵਗੁਣਿਆਰੇ, ਹਰ ਸਰਣਾਗਤ ਰਾਖ ਲਿਓ ਮੂੜ ਮੁਖ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਹਿਜ ਅਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰਮਤੀ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਤਿਹਾਇਆ, ਸੱਜਣ ਹਰ ਪ੍ਰਪਾਇਆ ਕਰ ਸੋਹਿਲਾ ਗਾਇਆ। ਹਰ ਦਿਆਤਾ ਪ੍ਰਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਹਰ ਚਿਤਾਇਆ,
जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुरु पाया गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा चौपदे एक ओंकार सतगुरु प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़या जोगी गोरख गोरख करया मैं मूर्ख हर हर जप पढ़या ना जाना क्या गत राम हमारे हर भज मन मेरे तर भव जल तू तारी रहाओ सन्यासी विभूत लाए दे सवारी परते त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूर्ख हर आस तुम्हारी खत्री कर्म करे सूर तन पावे सूद वैस पर किरत कमावे मैं मूर्ख हर नाम छड़ावे सब तेरी श्रेष्ठ तू आप रया समाई गुरमुख नानक देवड़े आई मैं अंदले हर टेक टकाई गौड़ी गुआरे महला चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की भज मिल साधु संगत जन की तर भव जल अकथ कथा सुन हर की गोविंद सत्संगत में लाए हर रस रसना राम गुण गाय रहाओ जो जन त्याव हर हर नामा तिन दासन दास करो हमरा मा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित आवे जन पग रेण भागी पावे संत जना स्यों प्रीत बन आई जिनको लिखत लिखिया तुर पाई ते जन नानक नाम सुवाई गौड़ी गुआरे री महला चौथा माता प्रीत करे पुत खाए मीने प्रीत पही जल नहाए सतगुर प्रीत गुरसिख मुख पाए ते हर जन हर मेलो हम प्यारे जिन मिलया दुख जाए हमारे रहाओ ज्यों मिल बछरे गऊ प्रीत लगावे कामन प्रीत जा पिर घर आवे हर जन प्रीत जा हर रस गावे सारंग प्रीत बसे जल थारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपेंद्रंकारा नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरे री महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होए अन खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल अगाए हर दासन दे हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चक्की विपरीत सूरज मुख लागे मिले प्यारे सब दुख त्याग गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिकसे देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिनस जाए कूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआरे नी महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम ते आया हर धनी जन हर जपया तिन पीछे छुटी घनी गुरसिख हर बोलो मेरे भाई हर बोलत सब पाप ले जाई रहा जब गुर मिलया तब मन वसे आया तावत पंच रहे हर त्याया अनदिन नगरी हर गुण गाया सतगुरु पग धूर जिना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिव लाई ते हर दरगे मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग तिहावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गुआरे नी महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहया बनवारी हर आपे तप तापै लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुर धन आपे हर आपे विकसै वेखै विकसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारंग अमृत थारा हर अमृत आपियावन हारा हर आप करे आपे निस्तारा हर आपे बेड़ी तुलहा तारा हर आपे गुरमति निस्तारा हर आपे नानक पावे पारा गोली बिरागण महला चौथा शाह हमारा तू तनी जैसी तू रास दे तैसी हमले हर नाम वणंजय रंग स्यों जे आप दयाल होए दे हम बन जा रे राम के हर वणज करावे दे रास रे रहाओ
ਲਾਹਾ ਹਰ ਭਗਤਨ ਖੱਟਿਆ ਹਰ ਸੱਚੇ ਸਭ ਮਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਵੱਖਰ ਲੱਦਿਆ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਰ ਵਣਜ ਕਰੈ ਵਪਾਰੀਏ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗੀ ਦੁੱਖ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਜੈਹੇ ਵਣਜੈ ਹਰ ਲਾਇਆ ਫਲ ਤੇਹਾ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਵਣਜ ਜੋ ਜਨ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਦੇਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਮੂਲ ਨਾ ਹੋਈ ਗੋੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਉਂ ਜਨਨੀ ਗਰਭ ਪਾਲਤੀ ਸੁਤ ਕੀ ਕਰੇ ਆਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਤਨ ਖਾਟ ਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਤਿਉਂ ਹਰ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹਰ ਰੱਖਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਆਪ ਹਥਾਸਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਰ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਗੁਸਈਆਂ ਜਨ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੁਜੈ ਵਢੀਆਂ ਰਹਾਉ ਮੰਦਰ ਘਰ ਆਨੰਦ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਮਨ ਪਾਵੈ ਹਰ ਅਸ ਮੀਠੇ ਮੁਖ ਲਗੈ ਜਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਜਨ ਪਰਵਾ ਸਦਾਰ ਹੈ ਇੱਕੀ ਕੁਲੀ ਸਭ ਜਗਤ ਛਡਾਵੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਹਰ ਕੀਆ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਈ ਹਰ ਪਗ ਭੰਡਾਰ ਲਹਾਏ ਦਾ ਆਪੇ ਵਰਤਾਈ ਲਾਲਾ ਹਾਟ ਵਿਹਾਜਿਆ ਕਿਆ ਤਿਸ ਚਤਰਾਈ ਜੇ ਰਾਜ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਲਾਮ ਕਾਸੀ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਕਢਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਨ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀਉ ਲਾਏ ਹਲ ਜੋ ਤੈ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ ਹਰ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਗੇ ਗਤ ਕੀ ਜੈ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਲਾਏ ਹਮ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੌਦਾਗਰ ਧਾਵੈ ਤਨ ਖੱਟੇ ਆਸਾ ਕਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਵੈ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲਤਾ ਹਰ ਬੋਲ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਬਿਕ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਹਾਟ ਕਮਾਏ ਮੋਹ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਏ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਪਾਏ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨ ਤਰੈ ਸੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਪਰਮਾਇਆ ਵੈਗਾਰ ਫਿਰੈ ਵੈਗਾਰਿਆ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਘਰ ਕੇ ਕੰਮ ਹਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਅਰਥ ਸਮਾਇਆ ਕਹਿ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਡਾਨ ਲੇ ਕਹਿ ਨਰਪਤ ਮਰ ਜਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਤਾਈ ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮਨੈ ਤੋਟੇ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜਿਤਨੀ ਭੂਖ ਅਨਰਾ ਸਾਧ ਹੈ ਤਿਤਨੀ ਭੂਖ ਫਿਰ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਆ ਗਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਫਿਰ ਭੂਗ ਨ ਲਾਗੈ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਆਸ ਨਿਤ ਕਿਉ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ ਜਿਨ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਸੋ ਜਾਣਤਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਕੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਮੇਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਹਮ ਪਾਪੀ ਸਰਨ ਪਰੇ ਹਰ ਦੁਆਰ ਮਤ ਨਿਰਗੁਣ ਹਮ ਮੈਲੇ ਕਬੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਓ ਹਮਰੇ ਅਵਗੁਣ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹਰ ਗਣਤ ਨ ਆਵੈ ਤੂੰ ਗੁਣਵੰਤਾ ਹਰ ਹਰ ਦਇਆਲ ਹਰ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੇ ਹਰ ਭਾਵੈ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਰਾਖੇ ਗੁਰਸੰਗਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਛਡਾਵੈ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਜਬ ਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਤਬ ਬਿਖਮ ਹੋਏ ਜਾਏ
हम जैसे अपराधी अवर कोई राखे जैसे हम सतगुरु राख लिए छिड़ाए। तू मेरा पिता तू है गुरु माता तू गुरु बंध मेरा सखा सखाए। जो हमरे बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुरु संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले हैं चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागण महला चौथा कंचन नारी में जियो लभत है। मोह मीठा माया कर मंदिर घोड़े खुशी मन अरस अनरस लाया। हर प्रभ चितना आवे क्यों छूटे मेरे हर राया। मेरे नाम ए नीच कर्म हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल। कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे रहाओ। किस रूप नाही किस जात नाही किस ढंग न मेरा क्या मूले बोले गुण में हूं नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुर उबरे पुन सतगुरु केरा। सब जियो पिंड मुख नक दिया वर्तन को पानी। अन खाना कपड़ पहनन दिया रस अन पोगानी। जिन दिए सो चित न आवई पशु हाँ कर जानी। सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी। हम जंत विचारे क्या करें सब खेल तुम स्वामी। जन नानक हाट विहाजया हर गुलम गुलामी। गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सत जन पालती। राखे नदर मझार अंतर बाहर मुख दे गिरास खिन खिन पोचार। त्यों सतगुरु गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार। मेरे राम हम बार कहब के हैं आने। तन तन गुरु गुर सतगुरु पादा जिन हर उपदेश देखिए सियाने रहाओ। जैसी गगन फिरंती उड़ती कपरे बगे वाली। ओ राख्या चीत पीछे फिर बचरे नित हृदय सार संभाली। त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखे जी नाली। जैसे काती तीस बतीस है विच राखे रसना मास रत केरी। कोई जानो मास काती कैक्षात है सब वसकत है हर रत केरी। त्यों संत जना के नर निंदा करें हर राखे पैज जन केरी। पाई मत कोई जानो किसी के कशहात है सब करे कराया। जरा मरा ताप सिरत साप सब हर के वस है। कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मत नित चित नित्य हमें जरा नानक जो अंति अवसर ले छाया। गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुरु कही है। मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लही है। मेरा सतगुरु प्यारा कित बिद मिले हो खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाओ कर कृपा हर मिलया मेरा सतगुरु पूरा। इच पुन्नी जन केरी ले सतगुरु थूना। हग भक्त दृढ़ावे हग भक्त सुने ते सतगुरु मिलिए तोटा मूल न आवई हर लाभ नित दृढ़ी है। जिसको हृदय विगास है पौ दूजा नाही। नानक तिस गुर मिल उदरे हर गुण गवाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूढ़ा। हर रंग भीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की होंच गोली। जब हम हर सेति मन मानिया कर दीनो जगत सब गोले मोली रहा। ओ करो विवेक संत जन भाई खोज हृदय देख टंडोली। हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली। हर हर निकट वसै सब जग कै अपरंपर पुरख अतोली। हर हर प्रगट कियो गुर पूरे सिर विचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुरु गुरु विचोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी
जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी तिक मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर सेती राते सत्संगत मिल राम रस पाया हर नाम में नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर सहते तिनके पाक दोख सब बिन से जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे नुरमस्तक ते गुर संतोख सरनाते दुरंत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभु ठाकर तुम जीव अवड न दाते जन नानक नाम ले ता जीव हर जपिए हर कृपा ते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जीवन दाते मेरा मन हर से तीरा चे सतगुरु बंच दियो अत निर्मल जप हर हर हार मन माचे राम मेरा मन तन भेद लियो हर साचे जे काल कै मुख जगत सब ग्रसया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहो जिनको प्रीत नाई हर सेती ते साक्त मूड नरकाचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विष्टा मर मर पाचे तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दी जय दान हर हम जाचे हर के दास दास हम की जय मन किरत करे कर नाचे आपेशा वड्डे प्रभु स्वामी हम मन जा रहे हैं ताचे मेरा मन तन जियो रा सब तेरी जन नानक के साह प्रभु साचे गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख भंजन एक बिनो सुनो देखानी जिसते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुरु मेल मेरा प्राणी राम हम सतगुरु पार ब्रह्म करमाने हम मूड मुक्त असुदम होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहो जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फेकाने हर का नाम अनंत रस साख्या मिल सतगुरु मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुरु नी भेटिया ते साक्त मूड देवाने तिनके कर्म हीन तुर पाए देख दीपक मोह पचाने जिनको तुम दया कर मेले ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर प्रभ प्रगटे मत गुरु नाम समाने गौड़ी पूरी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी को किते हर पर नसीहै हर आपे बख्श लय प्रभ साचा हर आप छड़ाए छुट्टी है मेरे राम मन जप हर हर हर मन जपी है सतगुरु की शरण आए भज पाओ मेरे मन गुर सतगुरु पीछे छुट्टी है रहाओ मेरे मन सेव सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवियां निज कर वसी है गुरमुख जाए लहो गुर करे अपना कस चंदन हर जस कसी है मेरे मन हर हर हर हर जस्यु तुम लहलाह हर मन हसी है हर हर आप दया कर देवे ता अमृत हर चखी है मेरे मन राम बिन नाम बिना को दूजे लागे ते साकत नरजम कुठी है ते साकत चोर जिना नाम विसारे है मन तिन कै निक न पिटी है मेरे मन से वो अलख नरंजन नर हर जित सेवियां लेखा छुट्टी है जन नानक कर पर पूरे किए खिन मासा कोल ना तोल ना कटी है गौड़ी पूरी महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जीव अपन सब तेरी दया करो हर दर्श दिखावो मेरे मन तन लोच कनेरी मेरे राम मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचित गुर कीनी हर मिलया आए प्र मेरे रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबे तुम हर जानो मेरी अनद नाम जपी सुख पाई नित जीवा आस हर तेरी गुर सतगुरु दाते पंथ बताया हर मिलया आए प्र मेरी अनद अनद पहै वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश शंकर तेसा वसगद है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पै जन केरी गौड़ी पूरी महला चौथा हे मनुआ खिन ना टिकै बो रंगी दै दिस चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया गुर ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रहाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम करज गुरु बो साडे पार उपकार पुन बो किया पौ दुत्र तार पराडे जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गांडन गांडे जो पानी काग दिवस जात हैं त्यों मन मुकल लाडे
हम जाने कछु न जानू आगे त्यों हर राखे त्यों ठांडे हम फूल चूक गुर कृपा तहारो जन नानक उतरे कांडे गौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर पर भरया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिख तिरके गुर पाया मन हर लेव मंडल मंडा हे कर साधु अजली पुनवड्डा है कर डंडौत पुनवड्डा है रहाओ साकथार साधना जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा है ज्यों ज्यों चले चुबे दुख पावे जमकाल सह सिर डंडा है हरजन हर हर नाम समाणी दुख जन्म बनन पहु खंडा है अब नासे पुरख पाया परमेश्वर बो सोभ खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड़वड़ा है जन नानक नाम आधार ठीक है हर नाम में ही सुख मंडा है गोड़ी पूरी महला चौथा इस गेड़ में हर राम राय है के साध न पावे टीठा हर दीन दयाल अंग्रो किया गुर शब्दी चख डीठा राम हर कीर्तन गुर लव मीठा रहाओ हर अगम गोचर पार ब्रह्म है मेरे सतगुरु लाग बसीठा जिन गुर बचन सुखाने हियर है तिन आगे अण परीठा मन मुख हीरा अत कठोर है तिन अंतरकार करीठा बिसिर को बदूद पियाया बिकनिक से फूल फलीठा हर प्रभ आन मिला वो गुर साधु कास गरड़ शब्द मुख लीठा जन नानक गुर के लाले गोले लग संगत करू अमीठा गौड़ी पूरी महला चौथा हर हर हर शरीर हम वेचया पूरे गुर के आगे सतगुरु दाते नाम दृढ़ाया मुख मस्तक भाग सफागे राम गुरमत हर लेव लागे रहाओ काट काट रमैया रमत राये गुर शब्द गुरु लेव लागे तन मन देव काट गुरु को मेरा प्रम पहो गुर बचनी भागे अंधियारे दीपक आन जलाए गुर ज्ञान गुरु लेव लागे अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासे हो कार वस्त लही मन जागे साकत बद्धक माया थारी तिन जोहन लाग तिन जम जोहन लागे उन सतगुरु आगे शीस न बेचे हो वे आवे जाए अपहागे हमरा बिनो सुनो प्रभ ठाकर हम शरण प्रभु हर भागे जन नानक की लाजपत गुरु है सिर विच सतगुरु आगे गौड़ी पूरी महला चौथा हम अहंकारी अहंकार अज्ञान मत गुर मिले आप गवाया हो मैं रो गया सुख पाया धन धन गुरु हर राया राम गुर के बचन हर पाया रहा हो मेरे हीरा प्रीत राम राय की गुर मार्ग पंथ बताया मेरा जीव पिंड सब सतगुरु आगे जिन विछड़िया हर गल आया मेरे पंत्र प्रीत लगी देखन को गुर हृदय नाल दिखाया सहजनंद पया मन मोहरे गुर सतगुर आ गया आप विचाया हम अपराध पाप बहु कीने कर दुष्टि चोर चराया अब शरणागत अब नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पहाया गौड़ी पूरी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाज गुरमत मनुआ गावे वडपागी गुर दर्शन पाया तन तन गुरु लेवलावे गुरमुख हर लेवलावे रहाओ हमरा ठाकर सतगुर पूरा मन गुर की कार कमावे हम मल मल तुम्हें पाप गुरु के जो हर हर कथा सुनावे हृदय गुरमत राम रसायन जेवा हर गुण गावे मन रस करस कर रस अगहने फिर बहुर भूख न लगावे कोई करे उपाव अनेक बहु तेरे बिन कृपा नाम न पावे जन नानक को हर कृपा धारी मत गुरमत नाम दृढ़ावे गौड़ी राग गौड़ी माज महला चौथा गुरमुख जिंदू जप नाम करमा मत माता मत जियो नाम मुख रामा संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा वडपागी मिल रामा गुरजोगी पुरख मिलया रंगमाणी जियो गुर हंग रतड़ा सदा निर्वाणी जियो वडभागी मिल सुगुर सजानी जियो मेरा मन तन हर रंग पहना आवो संत मिलो नाम जपाहा वे संगत नाम सदा लैलाहा जियो कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो मिल पूर्व लिखेड़े तुर कर्मा सावण सरस अमृत जग छाया जियो मन मोर को केड़ा शब्द मुख पाया हर अमृत उठड़ा मिलया हर राया जियो जन नानक प्रेम रतन्ना गौड़ी बाज महला चौथा आओ सखी गुण कामन करीहा जियो मिल संत जना रंग माने रलिया जियो गुर दीप ज्ञान सदा मन बलिया जियो
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਠਹਿ ਢੋਲ ਢੋਲ ਮਿਲੀ ਆ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹਰ ਢੋਲੇ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਮੇਲੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇ ਚੋਲੇ ਜੀਓ, ਮਨ ਦੇਵਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲੇ ਜੀਓ, ਹਰ ਵਿਟੜਿਓ ਸਦਾ ਘੋਲੇ ਜੀਓ, ਵਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਵਸ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਨ ਵਸ ਜੀਓ, ਮਨ ਚਿੰਦਿਆੜਾ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਵੇਖ ਵਿਗਸਿਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮਨ ਅਣਦਰ ਅਣਦਰ ਹੱਸ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਾਇਆੜਾ ਵਡਭਾਗੇ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਨਿਕਲੈ ਲਾਹ ਮਨ ਹੱਸ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪ ਪਾਏ ਹਰ ਆਪੇ ਵੇਖੇ ਆਪੇ ਕਾਰੇ ਲਾਇਆ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਖਾਵੇ ਬਖਸ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਇੱਕ ਨਾ ਫੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਿ ਸੁਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾ ਭਿੱਖ ਮੰਗਾਇਆ ਜੀਓ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜੀਓ, ਗੋੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਨ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਰੰਗ ਰੱਤਾ ਮਨ ਮਾਹੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਰੰਗ ਨਾਨ ਲਿਖੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਅਲਖ ਲਖਾਹੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਸਭ ਦਾਲਦ ਦੁੱਖ ਲਹਿ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਪਦ ਉਤਮ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਮ ਸਮਾਹੀ ਜੀਓ, ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ ਨੈਣੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਕਿਨੇ ਹਰ ਪਵ ਬਿਠੜਾ ਨੈਣੀ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਬਾਜੋਂ ਧਨ ਕੁਮ ਲੈਣੀ ਜੀਓ, ਸੰਜਣਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ ਸੈਣੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਏ ਮਿਲੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਵਿਹਾਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਮੇਲੋ ਸੰਤ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਭੂਖ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜੀਓ, ਹਾਂ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੂੰ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਬਿਰੋ ਹਰ ਲਾਇਆ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਮਨ ਵਿਦਾ ਜੀਵਾਇਆ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਮਿਲੀਆਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀਓ, ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟੜੋਂ ਸਦਵਾਰੀ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਰਮ ਕਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਹਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਸ਼ਟ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਮੇਲੇ ਕਰ ਰਹਿ ਬਾਰੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਦਇਆ ਕਰ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣ ਤੁਮਾਰੀ ਜੀਓ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਚੋਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਚੋਜੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਾਨੋ ਪਹਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪੇ ਗੋਪੀ ਖੋਜੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਸਭ ਕਟ ਭੋਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਆਪ ਆਰੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਰਸੀਆ ਭੋਗੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਸੁਜਾਨ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋਗੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਜਗਤ ਪਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪ ਮਿਲੇ ਬੋਰੰਗੀ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੋਗ ਪਗਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਗਨ ਫਿਰੈ ਨਗਨੰਗੀ ਜੀਓ, ਆਪੇ ਜਗਤ ਪਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਦੇਣ ਦਾਨ ਦੇਵੈ ਸਭ ਮੰਗੀ ਜੀਓ, ਭਗਤਾਂ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਕਥਾ ਮੰਗੇ ਹਰ ਚੰਗੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਪੇ ਕਰਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਭਗਤਾਂ ਲੋਚ ਮਨ ਪੂਰੀ ਜੀਓ, ਆਪੇ ਜਲ ਥਲ ਵਰਤਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਰਵ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰੀ ਜੀਓ, ਹੋਰ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਆਪ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਹਦੂਰੀ ਜੀਓ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਆਪ ਜਾਵੇ ਤਿਉਂ ਵਾਜੇ ਜੀਓ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗਾਜੈ ਜੀਓ, ਆਪੇ ਸਰਨ ਪਵਾਇਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਜਨਾ ਰਾਖ ਲਾਜੈ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤੀ ਮੇਰੇ ਗੋਵਿੰਦਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਿਦਕਾ ਜੈ ਜੀਓ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮੈ ਹਰ ਬਿਰੋ ਲਗਾਹੀ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮਿਤ ਮੇਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜੀਓ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਬਾਈ ਜੀਓ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਕਾਰ ਭਾਈ ਜੀਓ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਸੰਤ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਕੇਰੇ ਜੀਓ, ਜਪ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜੀਓ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੀਓ, ਹਰਾ ਨਾਮ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਮੇਰੇ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਬਹੁ ਨ ਪਵਜਲ ਫੇਰੇ ਜੀਓ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਚਾਓ ਜੀਓ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੰਤ ਜੀਓ ਮਨ ਲਾਗਾ ਭਾਓ ਜੀਓ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਪਾਈਐ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਾਓ ਜੀਓ, ਵਡਭਾਗੀ ਜਪਨਾਓ ਜੀਓ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੜੀ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਆਸਾ ਜੀਓ, ਹਰ ਮੇਲੋ ਸੰਤ ਜੀਓ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰਭ ਪਾਸਾ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਜੀਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਅੜੀ ਮਨ ਆਸਾ ਜੀਓ, ਗੌੜੀ ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਜੀਓ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਲੀਵਾਂ ਜੀਓ,
मन हर रंग रतड़ा हर रस सदा पीवा जीव हर पायड़ा मन जीवा जीव मेरे मन तन प्रेम लगा हर सजन हर बाण जीव मेरा प्रीतम मित्र हर सुख पुरख सजान जीव गुर मेले संत हर सुगुण सजान जीव ना हो ना विटो कुर्बान जीव हर हर जन हर मीत साई जीव हर दसो संतो जीव हर खोज पवाई जीव सतगुरु त्रुफड़ा दस हर पाई जीव हर नामे नाम समाई जीव मैं वेदन प्रेम हर बिरो लगाई जीव गुर सरदा पूर अमृत पाई जीव हर हो दयाल हर नाम ते आई जीव जन नानक हर रस पाई जीव मज महला हमारा गौड़ी ग्वारी चौप दे को अंका सतगुर प्रसाद किन बिद कुशल होत मेरे पाई क्यों पाइये हर नाम सहाय रहाओ कुशल नगरे मेरी संभाया ऊंचे मंदिर सुंदर छाया झूठे लाल जन्म गवाया अस्ति कोड़े देख विखासा नस्कर जोड़े नेब खवासा गल जेवड़ी हो मैं के फासा राजकुमार दे दिस्तारी माने रंग भोग बहुनारी जो नरपत सुपने पे खारी एक कुशल मौका सतगुरु बताया हर जो कुछ करे सो हर क्या पतना पाया जन नानक हो मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई क्यों पाइये हर राम सहाय रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा क्यों भ्रमी है परम किसका होई जहाँ जल थल मैल रव्या सोई गुरमुख उभरे मन मुख पत खोई जिस राख आप राम दयारा तिस नाही दूजा पहुंचन हरा रहाओ सब मैं वरते एक अनंता तू ता तू सुख हो सो होई अचिंता वो सब किश जाने जो वर्तनता मन मुख मुहे जिन दूजी प्यासा बहु जोनी भवे तुर कृत लिखे आसा जैसा भी जैन तैसा खासा देख दर्शन पह विगासा सब नदरी आया ब्रह्म प्रगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा कई जन्म पै कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिक जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया श्रृंकाल एदे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करया कई जन्म गर्भ हिर खिरया कई जन्म सका रूप आया लख चौरासी जून परमाया साध संग पहो जन्म परावत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभिमान जीवत मरै दरगै परवान जो कुछ हुआ सो तुस्ते होग और न दूजा करना जोग तामिलियां जै लै मिलाए कहो नानक हर हर गुण गाए गौड़ी गौरी महला पंजवा कर्म भूम मैं बोमो नाम पूर्ण हुए तुम्हारा काम फल पावे मिटे जम त्रास नित गावे हर हर गुण जास हर हर नाम अंतर उरत हर सीकर कार्ज ले स्वार हो अपने प्रभ से हो सावधान तू तादर के पावे मान उपस्यान उपसगली त्याग संत जना की चरणी लाग सर्व जी है जा के हाथ कदिना विछड़े सब के साथ पाव छोड़ गो तिसकी ओट निमक माए हो वै तेरी छोट सदा निकट कर सुनो जान प्रभ की आज्ञा सत्कर्मान गुर के बचन मिटावो आप हर नाम नानक जप जाओ गौड़ी गौरी महला पंजवा गुर का बचन सदा अविनाशी गुर का बचन कटी जम फासी गुर का द बचन जी कै संग गुर कै बचन राचा राम कै रंग जो गुर दिया सो मन कै काम संत का किया सत्कर्मान राव गुर का बचन अटल अछेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतो हुना जाए गुर कै बचन हर के गुण गाए गुर का बचन जी कै साध गुर का बचन अनाथ कुनाथ गुर कै बचन नरक न पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रगट संसार गुर के बचन न आवै राहार जिस जन हुए आप कृपाल नानक सतगुरु सदा दयाल गौड़ी ग्वारी महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मैं राख्या जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पैर तिहाई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिल अपना खसम त्यों रहाओ जिन कीता मूड़ ते भगता जिन कीता बेसुर ते सुरता जिस प्रसाद न वै निध पाए सो प्रमन ते बिसरत नाही जिन दिया ने थावे को थान जिन दिया निमान को मान जिन कीनी सा पूर्ण आसा सिमरो रहन दिन सास गिनासा जिस प्रसाद माया सिल काटे गुर प्रसाद अमर बिखाटे कहो नानक इसके इसते किश नाही राख नहारे को सलाही गौड़ी ग्वारी महला पंजवा
तिसकी शरण नहीं पहुसोग, तिस ते बाहर कछु न होग, तजी स्यान पल बुद्ध बेकार, दास अपने की रखनहार, जप मन मेरे राम राम रंग, कर बाहर तरे सत्संग रहो, तिसकी टेक मन है मेरा, गुगा शब्द अमृत रस चाक, अवर जतन कहो कौन काज, कर कृपा राखे आप लाज, क्या मनुख कहो क्या जोर, झूठा माया का सब सोर, करण करावन हार स्वामी, सगलटा के अंतर जामी, सर्व सुखा सुख साचा एह, गुर उपदेश मने मैले, जाको राम नाम लेव लागी, कहो नानक सो धनवट पागी, गौड़ी गौरे महला पंजा, सुनर कथा उतारी मैल, पहा मनीत पहे सुख सैल, बड़े भाग पाया सा संग, पार ब्रह्म सिमला गौरंग, हरा नाम जप जन तरयो, अग्न सागर गुर पार उतरयो रहाओ, कर कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल विख गए, सर्वदान पीखे मन माहे, आव ढूंढन काहे खो जाए, प्रभ अपने जप है दयाल, पूर्ण हुई सेवक हाल, बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास, एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूर रहे ओ सब जाए, गुर पूरे सब परम चुकाया, हर सिमरत नानक सुपाया, गौड़ी गौरी महला पंजवा, अगले मुए से पाछे परे, जो ब्रे से बंद लक खरे, ये तंदे में ओए लपटाए, उनते दुगड़ धनी उनमाए, ओ बिला कशीत न आवे, बिरस जाए तो लपटावे रहाओ, असा बांधी मूर्ख देह, काम क्रोध लपट्यो स्नेह, सुरे ऊपर ठांडो धर्म राय, मीठी कर कर विख्या खाए, ओ बंदो हो साधो बैर, अमरी भूम कौन काले पार, ओ पंडित हो चतर सियाणा, करणे हर न बुझे बिगाना, अपनी गत में आपो जाने, क्या को कह क्या बखाने, जित जलाओ तित तलगना, अपना भला सबका हो मंगना, सब किस तेरा तू करणे हार, अंत नहीं किश पारावार, दास अपने को दी जय दान, कबू ना विसरै नानक नाम, गौड़ी गौरी महला पंजवा, अनक जतन नहीं होत छुटारा, बहुत सियाण पागल पहारा, हर की सेवा निर्मल हेत, प्रभु की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गौर नाम का ओला, तुझे ना लागे ताता छुला रहाओ, ज्यो बहुत पैसा गन माहे, अंधकार दीपक दीपाहे, अग्न सीत का लाह दुख, नाम जपत मन होवत सूत, तुझ जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस, डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमीत, नाम खुद सोई जन पावे, कर कृपा जिस आप दे वहवे, हर हर नाम जां कै हृदय वसे, दुख दर्द ते नानक नसे, गौड़ी गौरी महला पंजवा, बहुत दर्ब कर मन आघाना, अन रूप देख मैं पतियाना, पुत्र कलतर उर्ज्यो जान मेरी, ओ बिन सैवे पस मैं ठेरी, बिन हर भजन देखो बिललाते, त्रिग तन माया संगराते रहाओ, ज्यों बेगारी कै सिर दी जयदाम, होए खसमे कै करे उन दुख सहाम, ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे ता निरार्थ काजा, ज्यो राखा खेत ऊपर कराए, खेत खसम का राखा उठ जाए, उस खेत कारण राखा कड़े, तिसके पाले कछु न पड़े, जिसका राज तिसे का सपना, जिन माया कीनी तिन लाही तृष्णा, आप बिना है आप करे रास, नानक प्रभ आके अरदास, गौड़ी गौरी महला पंजवा, बहु रंग माया बहु बतेखी, कलम कागज स्यान पर लेखी, मैर मलूक हो देख्या खान, थाते नाही मन तृप्तान, सुख सुख मुखो संत बिताओ, कृष्णा बूझे मन तृप्ताओ रहो, अस पवन हस्त असवारी, चुआ चंदन सेज सुंदर नारी, नट नाटक अखारे गाया, पामे मन संतोख न आया, तकत सबा मंडन दोली चे, सगल मेरे सुंदर बागीचे, आखेड़ बिरत राजन की लीला, माना सुहेला पर पंच हीला, कर कृपा संतन सच कया, सर्व सुख ए आनंद लहया, साध संग हर कीर्तन गाई है, कौ नानक उड़ पागी पाई है, जाके हर तन सोई सहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाओ दूजा, गौड़ी गौरेरी महला पंजवा, प्राणी जाने ए तन मेरा,
बार बार आहूं लपटेरा पुत्र कलत्र ग्रस्त का फासा हो न पाये राम के दासा कम सो विद्य राम गुण गाए कम सो मत चित रह माय रहाओ जो पलाई सो बुरा जाने साच कहे शुभ के समाने जाने नहीं जीत अरहार ये विलासा संसार जो हलावल पी सो पीवे बोरा अमृत नाम जाने कर कौरा सासंग कह नाही नेर लख चौरा से प्रमता फेर एक जाल फिहाय पंखी रस रस पू करे भूरंगी कौ नानक सिपाहे कृपाल गुर पूरे ताके काटे जाल गौड़ी गौरे महला पंजवा तो कृपा ते मार्ग पाई है प्रभ कृपा ते नाम ते आई है प्रभ कृपा ते बंधन छूटे तो कृपा ते हों मैं टूटे तुम लावो तो लागे सेव हम ते कृष्णा देव होवे देव रहाओ तुद पावे ता गावा बाणी तुद पावे ता सच खाणी तुद पावे ता सतगुरु माया सर्व सुखा प्रभ तेरी दया जो तुद पावे सो निर्मल कर्मा जो तुद पावे सो सच धर्मा सर्व निदान गुण तुम ही पास तुम साहिब सेव के अरदास मन तन निर्मल होए हर रंग सर्व सुखा पावो सत्संग नाम तेरे रह मन राता एक कल्याण नान कर जाता गौड़ी गुवारे महला पंजवा आन रसा जीते तें चाखे निमख न तृष्णा तेरी लाथे हर रस का तू चाखे साध चाकत होए रह विसमाद अमृत रसना पियो प्यारी ए रसाती होए तृप्तारी रहाओ हे जेवे तू राम गुण गाओ निमक निमक हर हर हर थ्याओ न सुनिए कथू जाइए सात संग तुड़ भागी पाई है आठ पैर जेवे आराध पार ब्रह्म ठाकुर अगाध इहां उहां सदा सुहेली हन गुण गावत रसन अमोली बनस्पत मौली फल फल पेडे ए रसाती बहु न छोड़े आना रस कस लवे न लाई कौ नान गुरु पै सहाई गौड़ी गुवारे महला पंजवा मन मंदिर तन साजी बार इसी मदे बोस्त अपार इसी पीतर सुनियत साह कवन पारी जा का उहां विसाह नाम रतन को क्यों बिहारी अमृत भोजन करे आहारी रहाओ मन तन रपी सेव करी जाय कवन सो जुगत जित कर पी जाय पानी लगो तज मेरा तेरे कवन सो जन जो सौदा जोरे महल सा का किन बिद पावे कवन सो बिद जित पीतर बुलावे तू वड शाह जाके कोट बन जा रे कवन सो दाता ले संचारे खोजत खोजत निज कृपाया अमोल रतन साच दिखलाया कर कृपा जब मेले साहे कहो नान गुर कहवे साहे गौड़ी गुवारी महला पंजवा रैन दिन सरह एक रंगा प्रभ जाने प्रभ को जाने सदी संगा ठाकर नाम कियो उन वर्तन तृप्त अगावन हर कह दर्शन हर संग राते मन तन हरे गुर पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहारे आज्ञाकार एको वंश एको व्यवहार।

तू मेरी सेवा तू संग रचिया तू मेरी ओट तू अंतर तू ते आया मरम तुम्हारा गुर ते पाया सतगुर ते दृढ़िया एक एक है नानक दास हर हर टेक है गोड़ी गोरी महला पंजवा व्याप्त हरक सोग विस्तार व्याप्त सुर्ग नरक अवतार व्याप्त धन निर्धन एक सोबा मूल व्याप्ति व्याप्त सलोबा माया व्याप्त बहु प्रकारी संत जी में प्रभ ओट तुम्हारी रहो व्याप्त अहम बुद्ध का माता व्याप्त पुत्र क्रत्र संग्राता व्याप्त हस्त कोड़े अरवस्था व्याप्त रूप जोबन मंदवस्था व्याप्त पुहम रंग अर रंगा व्याप्त गीत नाद सुन संगा व्याप्त से सैल सिंगार पंचदूत व्याप्त अंधेहार व्याप्त कर्म करे हो फासा व्याप्त गृहस्थ व्याप्त उदासा अचार व्यार व्याप्त हे जात सब कुछ व्याप्त बिन हर रंग रात संतन के बंधन काटे हर राय ताको कहां व्यापै माय कौ नानक जिन तू संत पाई ता कि निक न आवै माई गौड़ी ग्वारी महला पंजवा नैनो नींद पर दृष्ट विकार श्रवण सोने सुन निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे साद मन सोया माया विसमाद इस ग्रह में कोई जुगत रहै साबत वस्तु अपनी लहै रहाओ सगल सहेली अपने रसमाते ग्रह अपने की खबर न जाती मुसनहार पंच बटवारे सुने नगर परे ठग हारे उन तेरा खैबरा अपन माई उन तेरा खमीत न पाई द्रभ स्याम नाओ ए रहते सा संग ओ दुष्ट सोते कर कृपा मोय सारंग पान संतन पूर सर्व निधान सावत पूंजी सतगुरु संग नानक जागे पार ब्रह्म कह रंग जो जागे जिस प्रभ कृपाल ए पूंजी बास्त तन माल रहाओ दूजे गौड़ी गौरी महला पंजा जाके वस खान संतान जाके वस सगल जान जप का किया सब कुछ होए तिस्ते बार नाई कहो कहो बेनंती अपने सतगुरु पाए काज तुम्हारे देन बहाय रहो सब ते ऊजा कदर बार भक्त सगल भक्त जा का नाम आधार सर्व व्यापद पूर्ण तनी जा की शोभा कट कट बनी जिस सिमरत दुख डेरा टाहे जिस सिमरत जम कृष्णा कहे जिस सिमरत हो सूखे हरे जिस सिमरत डूबन पाहन परे संत सभा को सदा जयकार हरा नाम जन प्राण आधार कहो नानक मेरी सुनी अरदास संत प्रसाद मोह को नाम निवास गौड़ी ग्वारी महला पंजवा सतगुरु दर्शन अगण्य वारे सतगुरु पीड़ित हो मैं मारे सतगुरु संग नाई मंडोले अमृत बाणी गुरमुख बोले सब जग साचा जा सच में राते शीतल सांत गुरु ते प्रभ जाते रहाओ संत प्रसाद जत हर नाओ संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ संत प्रसाद सगल दुख मिटे संत प्रसाद बंधन ते छुटे संत कृपा ते मिटे मोह परम साध रेण भजन हर धर्म साध कृपाल दयाल गोविंद साधा मैं हर हमरी जिंद कृपा ने दो कृपाल ते आओ सात संगत बैसन पाओ मोह दुर्गुण को प्रभु की नींद है सात संग नानक नु लै गोड़ी महला पंजवा सात संग जप्यो